0: क्लास तुम कुफा भी
1: अलग्ने नम पास के साने अंधवान्या ते अंदे इचे ब्लॉक सही इचे ट्रोंग यू सेज़न ते ना प्रोग्राम नहीं हुआ तो उसे कुछ ते बना बोल वापिस सही ना लोग ना सफ़ा ते सेज़न सफ़ी ते नहीं हुआ ना ट्रोंग फ़ियालम बोल नहीं जाने वचानो हम नहीं मिस सकेला ना करूँ आ ते फ़ियालम बोल नहीं वचानो मना वो इचे ते सही मेने किस ते मलो श्याम नोर्ती ते अरे फिर सही दे मना बोटर पापांग सही जो नेतो मियाओ
2: हम सो फिफ़ो ना चालो ते सही वो ना तुम तो कचान नहीं फादर मजाना का संदाय मजेन वो ना तुम तो कचान तोल मनो सेट सुम चागा चागा जान जाए चुम फोक जाए चुमनीन आओ जाए मनो जे मफान पांग फुन नया ते मने तनान माला कासरे चारे च मनो चुनाए कुरा ब्रामिया तो आ ते सही नहीं बाई ते तनाए वे इंगा नहीं बाई उसी सना तोलू फोक करे चा Usalama tahu tu, sesalama sesatu.
3: Fafa kayaan nuba afa kamu jecik, panut cik, mila fi bepan antan cik, hok cik ibepak. Ira fi derana fon dia naya fanan telia naya ratsman dia rendiran sotul sore fa ira te am nira. To cucu ta fa cik engke zoi fanam msoni, msona fi rene cik esoti ta fa lacakalal cik.
4: Kerabu kada musan dia nanti lepas. Semba antikian ruang ke, si baru tenambang rumetosan bang panen bang tukatan. Ini memas nang bata dia nak semanjakan mud, nanti tulis telefon isanan. Icil musan ini arah tu, jadi macam berumbi full mud di semba sekelimin bah, ini sahaja top ni tahu nak tulis tukatan. Soalnya saya tu tentang fit Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan ni saya tu tu ni mi fafa ke zonnya so tom so ni mana contian mana mana.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk fafa.

0: तुमको वाफी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तो नहीं लें तो सच्चे माता उसे ले हुए ही फलों से तिवरी से ये तो तुल्यारा दे आकु नहीं मुझे छिमन दे या जैसे मुसारे के जैसे सच्चे कुमाते लो तिवरी स्तु को जैसे नहीं सच्चे केरे थे हम उन उलू मलाक हम जोफ्तो ने निकलो जिंदगी ने फ़ज़ाई पमारु चाकु हुना ही निकलो आकु अविली मूरा छिले तक ले उलू मुझे के छिमी बोगे सच्चे अंसानो माता उसे ले विरी से Zaisan mahatunga na itarai ko kumateluan virus tu di bahoga. Madagascar, jadi nafa atu yang simon tuliara musare.

0: तुमको वा भी
1: सूतु सूत सानी ने रे जगल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्कले तम से बिकुम तू चला रे नाना का तीन नाना का काम रे ते तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन ते जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन ते रिस के जान पा नज़े वा फिक्री जन मु उतनी मान लेकिन फसल दे दिसाना कुदे मनारा कनास सेमु जान ले फिते साना दे फा मनारा कंटेन दे ए देमरा रे ना ता फिते सो अंतां मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु पफतारा कौन सा है ये ले फिया ना का फिना जाने मा सुत सा वो ना ता फिर ले तीनों रो पिये का नहीं चाहते ना बुला चुना ये नो जाने
3: ए सुत सान ले वचने मुझे ते माता कास्कियारा सुनना ला को ले सुतुंग अतेती सेना वातर पे सूट जिस चीज में आपसे लेता हूँ सूट सूट सान से ले सूट सूट पे ना काफी ना टीम याना कर सारे तुम आता थे तेवाला सा सीज़न सोच सोच मुलाला सा चेक नहीं सेंट साझा मापा ये रहना जब यान जमाना नहीं मापता ना जरा कैसे तो ये तांज ना तुम तुम्हारे ने
4: पना काफी ना सूट ले ले उल्ला ना दे तुम क्या araka fanirina hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy izany efa ankehirezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafi tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम कुफा भी
1: फिल विप वार्चा वोशारे अभी वोचिन वोपेन दायतुन फिवेलुमना या चम निबुआना ते तो मुन्तान दंग वार्चों वोशार तुन वार्चों जोका चुवीपेन दायाएं दस्मांग में सिंग शाकी दफ्तिया वनुं फ़ाज़ाकना नाइ जान मतुंग अंग्रेज़ का राजा निसांगे के नंग तो बीली अम गराब दाउल याब कने संजय जान दाते नंबी शेफ़े नंबी फ़ेना नाइ अंगत लंग नाइ शक्ति या इजाज़ जाने दातुकुं वाज़ जान तो बीली तन नरी वम फार्चब दाउल नाइ अंगालं तुंग कुछ नाइ तूरी दस्या जान नुन फनकाना इश करा जने तान फा जकाना यू दा आविद नाइ जान गरा बराय को कोई तूरी तेलो रिवु फा मरुता नाइ तुम तेल तन कम निश ताऊ निश ताऊ दा सिलाफ नाइ दा ना जेस नाइ दिमान जातु जे दिमान जात जान पुदा बुला सिलाफ शक्तिया उन तो बिले मरुता नाइ ना सीशी दा उन लोम तना नाइ तू सी विदेन यू शक्तिया शम्मा नाग फतूर निया बूर अंदे मांगन जुर्निया गालन जाए गांगे तेलो रिवु शनांजु चाय मरारे मुंगांगे दावते जान मित भुगन जाऊं लंग रेते ना शिशम नहीं क्या नहीं अंगत लंग नहीं जान क्रीज आज शिशा तू कर जराई क्या है
2: दस्मास में वेलग दस्मास
1: दस्मास में वेलग का दा दंगा नहीं तुम जानी दम तरंग में ना रेव तुम जो फ़ाज़ कारम बुने दावल गांग याब नां को मिनम नहीं तुम डिस्ट्रिक्ट जिसका बुने दावल गांग बाय सुजू वेना ना एम जाय आबा मिजाल या तुम तेरम जाली दंग फ़ाफ़तेश नंग शिशम नहीं तुम क्या इन दशा लम सारंग वातंग नहीं उन शंग नहीं जान मांग मिजाद उन फ्रोपाइंग गांग बामा मुझे ना एम क्या उन फ्रोपाइंग शक्ति दत दिमाग पुकूज मांग फ्रोपाइंग दम जाजान दशा दमाइन उन फ्रोपाइंग दानिया कचो कुन फ्रोपाइंग जाद तेल जाद उन फ्रोपाइंग दासी वो विद नहीं को जान जे उन फ्रोपाइंग राय का जान दिफस वो विद नहीं दायेबे जान जान शक दा दाते नमा जंजीरंग आसे इजावे उवाज ने फरानाई रशंग चियम बुलम तुई तुई टीकी आ दवार रशंग शक ने फरानाई तुनी ना उफात मिसे शक दा ए जान तरंग ना या बको
0: शोटो तुम कुला शोटो तुम कुवाव